शायनम् शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघन रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायनम्।

अतिचायन शतयोजन शतशतयोजन शरथि नियोजन शर परिलङ्घन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पणम् बडवाकृत बड बडवा